हाय कौशन, कुड यू प्लीज प्ले दीज टू सॉन्ग्स फॉर मी। तो कितनी अच्छी है, फ्रॉम राजा और रंक, एंड माँ मुझे अपने आंचल में, कम्स फ्रॉम छोटा भाई। जस्ट वांट टू विश ऑल मदर्स ऑल ऑफ लोटस एफएम एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ए वेरी हैप्पी मदर्स डे। दिस कम्स विद लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम शक्सी तराम। थैंक यू कौशन।

0: फिर इतने बड़े फ्यूचर में मेरे लिए कोई जगह है भी या नहीं? तू रह लेगी मेरे बिना? पर मैं नहीं रह पाऊंगा यार, ऐसा फ्यूचर जिसमें तू ना हो नहीं चाहिए मुझे।
1: So the trailer opens with a tense exchange between the characters. As the trailer unfolds, we're taken through different phases of the couple's relationship, showcasing moments of romance, heated arguments, and emotional breakdowns. Yeah, definitely one that I want to watch. Chand Mera Dil.